0: एक्सप्लोर करो, कुछ न्यू करो एट यूनाइटेड चार्टर स्कूल्स, क्योंकि यहाँ हर स्टडी वेंचर बनता है एक एडवेंचर. एडमिशन्स ओपन फॉर ऑल क्लासेस अप टू मैट्रिकुलेशन एंड ओ लेवल. यूनाइटेड चार्टर स्कूल्स, इनफिनिट पॉसिबिलिटीज.
1: अ प्रोजेक्ट ऑफ बीकन हाउस.
2: घर बैठे दिल भर के शॉपिंग करनी है, वो भी किस्तों में? बस अपने फेवरेट ब्रांड्स की वेबसाइट पर पेमेंट बाय येलो सेलेक्ट करो और पे करो 3 सिंपल इंस्टॉलमेंट्स में, तो जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो विद येलो बाय जैस कैश.
3: You're listening to
4: Non-Stop Hits.

0: perfect antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: This show is brought to you by Jazz.
3: City FM 89, we're playing your song.
4: Hair ka naya no frost IoT refrigerator jiska multi airflow system de balanced cooling har compartment mein aur rakhe aapke refrigerator ko clean twin inverter technology jisse mile maximum cooling aur energy saving no frost no worries
5: behtareen insurance har waqt aapke saath jaise easy paisa insurance marketplace 50 se zyada plans behtareen coverage khas discounts aur sirf 24 ghanton mein claim hasil karne ki sahulat cover 3 ke liye dedicated plans aur 25,000 top doctors se consultation bhi abhi Easy Paisa app par insurance marketplace explore kare. Easy Paisa digital bank. Easy wala bank.
4: Hair no frost IoT refrigerator. Iski IoT technology food expiry notification ke saath saath aapko de mobile app se complete control. No frost, no worries.
6: Explore karo, kuch new karo. At United Charter Schools. Kyunki yahan har study venture banta hai ek adventure. Admissions open for all classes up to matriculation and O level. United Charter Schools. Infinite possibilities.
7: A project of Beacon House.
8: घर बैठे दिल भर के शॉपिंग करनी है वो भी किस्तों में बस अपने फेवरेट ब्रांड्स की वेबसाइट पर पेमेंट बाय येलो सेलेक्ट करो और पे करो 3 सिंपल इंस्टॉलमेंट्स में तो जो चाहे खरीदो पैसे आराम से दे दो विद येलो बाय जैस कैश
9: नया अकाउंट भी कल परसों क्यों अब खुलवाओ अभी फाइनेंशियल फ्रीडम फॉर ऑल होगा तभी जब हर फैसला होगा अभी कुछ बैंक्स आपका कल बनाते हैं अभी बैंक बनाता है आपका आज अभी डाउनलोड द ऐप अभी अभी बैंक फाइनेंशियल फ्रीडम फॉर ऑल

0: belong to your song.
1: Only on City FM 89.
2: You're listening to City FM 89.
3: Trending today.
4: Pop star Charlie XCX has dropped her brand new album titled Music Fashion Film. The project features 11 tracks and is up on all platforms.
5: City FM 89, we're playing the song.
6: This show is brought to you by Jazz.
7: टैक्स पे करना अब हुआ आसान. अभी जैज कैश ऐप डाउनलोड करें और अपना टैक्स पे करके लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं और जीतें इलेक्ट्रिक स्कूटर. आसान पेमेंट्स और एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स के लिए जैज कैश है ना.
8: हायर का नया नो फ्रॉस्ट आईओटी रेफ्रिजरेटर जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन. ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग. नो फ्रॉस्ट नो वरीज.
9: शेयर बंडल्स वो भी डिस्काउंट पर. सब्सक्राइब करना तो बनता है तो बस अभी जैज कैश ऐप से जैज V5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और पाओ 2,000 रुपए तक का बेहतरीन डिस्काउंट अपने फेवरेट बंडल्स पर. बड़े डिस्काउंट्स के लिए जैज कैश है ना.
10: अभी बैंक बनाता है आपका आज अभी. डाउनलोड दी ऐप अभी. अभी बैंक फाइनेंशियल फ्रीडम फॉर ऑल.
11: बेहतरीन इंश्योरेंस हर वक्त आपके साथ जैसे इजी पैसा इंश्योरेंस मार्केटप्लेस. 50 से ज्यादा प्लान्स, बेहतरीन कवरेज, खास डिस्काउंट्स और सिर्फ 24 घंटों में क्लेम हासिल करने की सहूलत. कवर 3 के लिए डेडिकेटेड प्लान्स और 25,000 टॉप डॉक्टर से कंसल्टेशन भी. अभी इजी पैसा ऐप पर इंश्योरेंस मार्केटप्लेस एक्सप्लोर करें. इजी पैसा डिजिटल बैंक. इजी वाला बैंक.

0: घर बैठे दिल भर के शॉपिंग करनी है, वो भी किस्तों में? बस अपने फेवरेट ब्रांड्स की वेबसाइट पर पेमेंट बाय येलो सेलेक्ट करो और पे करो 3 सिंपल इंस्टॉलमेंट्स में, तो जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो विद येलो बाय जैस कैश।
1: City FM 89. We're playing your song.
2: You're listening to
3: Non-Stop Hits.
4: No talk.
5: Just you
4: and the music.
5: Back to back
4: starts now.

0: move along to your song.
1: Only on City FM 89.
2: It's 9:30 a.m.
1: City FM 89.
3: Trending today.
4: Pop star Charlie XCX has dropped her brand new album titled Music Fashion Film. The project features 11 tracks and is up on all platforms.
5: We are
3: City FM 89. This show is brought to you by Jazz.
6: City FM 89, where we're playing the song.
7: Hire ka naya no frost IoT refrigerator jiska multi airflow system de balanced cooling har compartment mein aur rakhe aapke refrigerator ko clean twin inverter technology jisse mile maximum cooling aur energy saving no frost no worries
8: tax pay karna ab hua aasan abhi jazz cash app download kare aur apna tax pay karke lucky draw mein shamil ho jaye aur jeete electric scooter aasan payments aur exciting rewards ke liye jazz cash hai na
9: तैयार हो अपनी जिंदगी का अगला कदम लेने के लिए AEO पाकिस्तान लाया है आइल्सॉन कंप्यूटर जहां टेस्टिंग का हर पल होता है कंफर्टेबल स्मूथ और स्ट्रेस फ्री डेली अवेलेबिलिटी नेशन वाइड सेंटर्स और रिजल्ट्स भी मिले विद इन जस्ट 3 days आज ही बुक करें अपना आइल्सॉन कंप्यूटर AEO पाकिस्तान पाकिस्तान्स मोस्ट ट्रस्टेड आइल्स टेस्ट सेंटर Book now at www.aeo.com.pk.
10: Shared bundles, वो भी डिस्काउंट पर. सब्सक्राइब करना तो बनता है. तो बस अभी Jazz Cash app से Jazz V5 Fantastic bundle लगाओ और पाओ 2,000 रुपए तक का बेहतरीन डिस्काउंट अपने फेवरेट बंडल्स पर बड़े डिस्काउंट्स के लिए. Jazz Cash है ना?
11: अभी बैंक बनाता है आपका आज अभी डाउनलोड द ऐप अभी अभी बैंक फाइनेंशियल फ्रीडम फॉर ऑल
12: घर बैठे दिल भर के शॉपिंग करनी है वो भी किस्तों में बस अपने फेवरेट ब्रांड्स की वेबसाइट पर पेमेंट बाय येलो सेलेक्ट करो और पे करो 3 सिंपल इंस्टॉलमेंट्स में तो जो चाहे खरीदो पैसे आराम से दे दो विद येलो बाय Jazz Cash
7: Hire No Frost IoT Refrigerator. इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल No Frost, No Worries.

0: along to your song.
1: Only on City FM 89.
2: टैक्स पे करना अब हुआ आसान. अभी जैज कैश ऐप डाउनलोड करें और अपना टैक्स पे करके लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं और जीतें इलेक्ट्रिक स्कूटर. आसान पेमेंट्स और एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स के लिए जैज कैश है ना.
3: नया अकाउंट भी कल परसों क्यों? अब खुलवाओ अभी. फाइनेंशियल फ्रीडम फॉर ऑल होगा तभी जब हर फैसला होगा अभी. कुछ बैंक आपका कल बनाते हैं, अभी बैंक बनाता है आपका आज. अभी डाउनलोड दी ऐप अभी. अभी बैंक, फाइनेंशियल फ्रीडम फॉर ऑल.
4: सिटी एफएम 89, वी आर प्लेइंग योर सॉन्ग.
5: अटेंशन, द स्टैंडर्ड कम्यूट हैज बीन डीकमिशन्ड.
6: इंट्रोड्यूसिंग अ सिस्टम ओवरराइड फॉर योर इयर्स.
7: New energy, new perspective. The same 24 hours, but a completely different vibe.
8: Join ABD as he takes over the streets.
9: Whether you're stuck in the third lane or finishing that final email,
10: your evenings just got an upgrade.
8: The rush hour with ABD.
11: Weekdays, 5 p.m. to 8 p.m.
10: Tune in or get left behind.
12: City FM 89.
13: You got me going crazy.
1: You're listening to
0: Non-stop hits.

0: डिस्काउंट अपने फेवरेट बंडल्स पर बड़े डिस्काउंट्स के लिए जैस कैश है ना
1: घर बैठे दिल भर के शॉपिंग करनी है वो भी किस्तों में बस अपने फेवरेट ब्रांड्स की वेबसाइट पर पेमेंट बाय येलो सेलेक्ट करो और पे करो 3 सिंपल इंस्टॉलमेंट्स में तो जो चाहे खरीदो पैसे आराम से दे दो विद येलो बाय जैस कैश
2: यू आर लिसनिंग टू सिटी एफएम 89 वी आर प्लेइंग योर सॉन्ग
3: यू आर लिसनिंग टू
4: नॉनस्टॉप हिट्स
5: No talk. Just you and the music. Back to back starts now.

0: City FM 89.
1: Share bundles, वो भी डिस्काउंट पर. सब्सक्राइब करना तो बनता है. तो बस अभी जैस कैश ऐप से जैस V5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और पाओ 2000 रुपए तक का बेहतरीन डिस्काउंट अपने फेवरेट बंडल्स पर. बड़े डिस्काउंट्स के लिए जैस कैश है ना.
2: पैसे खर्च हो तो रिवॉर्ड तो बनता है. जैस कैश से सिर्फ 99 रुपए में रिवॉर्ड हब सब्सक्राइब करें, चैलेंजेस कंप्लीट करके अपना लेवल अपग्रेड करें और जीतें शानदार प्राइजेस. तो देर किस बात की, हर चैलेंज को एक्साइटिंग रिवॉर्ड में बदलने के लिए जैस कैश है ना.
3: City FM 89. We're playing your song.
4: The old commute is broken. We're just here to help you override it.
0: ABD, the rush hour, 5 to 8 p.m.
5: A new era begins.
6: City FM 89.
7: Hold on! Special delivery coming through!
8: Sharing your thoughts with City FM 89 just got a whole lot easier.
9: We're now live on WhatsApp.
10: You can now send in your messages and voice notes on 03142-898989.
9: It's as easy as 03142-898989.
8: Save our number now and WhatsApp us.
0: City FM 89.
11: You got me going crazy.
9: You're listening to
12: Non-stop hits.

0: groove along to your song.
1: Only on City FM 89.
2: It's 2:30 p.m. City FM 89.
3: You got me going crazy.
4: घर बैठे दिल भर के शॉपिंग करनी है, वो भी किस्तों में? बस अपने फेवरेट ब्रांड्स की वेबसाइट पर पेमेंट बाय येलो सेलेक्ट करो और पे करो 3 सिंपल इंस्टॉलमेंट्स में, तो जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो विद येलो बाय जैस कैश।
5: अभी बैंक बनाता है आपका आज, अभी डाउनलोड द ऐप, अभी अभी बैंक, फाइनेंशियल फ्रीडम फॉर ऑल।
0: सिटी एफएम 89, वी आर प्लेइंग योर सॉन्ग।
1: You're listening to
6: Non-Stop Hits.
7: No talk.
8: Just you
7: and the music.
8: Back to back
7: starts now.

0: BFM 89.
1: It's 4:30 p.m.
2: City.
3: FM
2: 89.
4: अभी बैंक बनाता है आपका आज अभी. Download the app. अभी. अभी बैंक. Financial freedom for all.

0: perfect antidote to your road rage. City FM 89.
1: This show is brought to you by Jazz.
2: City FM 89.
1: This show is brought to you by AEO Pakistan.
3: You're listening to City FM 89.
4: Avail flat 25% and 40% off at the Diners Grand Azadi Celebration from 29th July. Hurry up and visit store now or shop online at diners.com.pk. Terms and conditions apply.
5: क्या आप जानते हैं कि उम्र बढ़ने के साथ हम 24% तक मसल मास खो सकते हैं? इसलिए इंश्योर जिसमें मौजूद 25 जरूरी विटामिंस और मिनरल्स रखे आपकी स्ट्रेंथ और मोबिलिटी को अप टू द मार्क. इंश्योर क्लिनिकली प्रूवन टू इंप्रूव मसल स्ट्रेंथ इन 90 डेज.
6: नाज़रीन, ताज़ातरीन खबर से आपको आगाह करेंगे कि पूरे शहर में फैल चुकी है आपके टॉयलेट की बदबू.
7: बंद करो ना ढक्कन.
8: Sweepy Clean करे तेजी से सख्त दाग और जरासीम का खात्मा और रखे टॉयलेट को चमकता हुआ साफ.
9: City FM 89.
0: Expose yourself to a world of music. And let your worries run free. Expose yourself to something you'll never otherwise experience.
10: Join me, Tapu Javeri, in the dark room while I expose you to some eclectic tunes every Wednesday, 7 to 9 p.m., only on City FM 89.
2: City FM 89.
11: You're listening to
0: The

0: perfect antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: It's 6 p.m.
3: This time check is brought to you by Jazz.
4: City FM 89.
5: Trending today.
6: Popstar Charlie XCX has dropped her brand new album titled Music Fashion Film. The project features 11 tracks and is up on all platforms.
1: City FM 89.
3: This show is brought to you by Jazz.
1: City FM
3: 89. This show is brought to you by AEO Pakistan.
1: City
7: FM
1: 89.
7: Avail flat 25% and 40% off at the Diners Grand Azadi Celebration from 29th July. Hurry up and visit store now or shop online at diners.com.pk. Terms and conditions apply.
8: क्या आप जानते हैं कि उम्र बढ़ने के साथ हम 24% तक मसल मास खो सकते हैं? इसलिए इंश्योर जिसमें मौजूद 25 जरूरी विटामिंस और मिनरल्स रखे आपकी स्ट्रेंथ और मोबिलिटी को अप टू द मार्क. इंश्योर क्लिनिकली प्रूवन टू इंप्रूव मसल स्ट्रेंथ इन 90 डेज.
9: नाजरीन, ताज़ा तरीन खबर से आपको आगाह करेंगे कि पूरे शहर में फैल चुकी है आपके टॉयलेट की बदबू.
10: बंद करो ना ढक्कन.
11: स्वीपी क्लीन करे तेजी से सख्त दाग और जरासीम का खात्मा और रखे टॉयलेट को चमकता हुआ साफ.
12: हायर कर नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन. ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग. नो फ्रॉस्ट नो वरीज.
13: बेहतरीन इंश्योरेंस हर वक्त आपके साथ जैसे इजी पैसा इंश्योरेंस मार्केट प्लेस. 50 से ज्यादा प्लान, बेहतरीन कवरेज, खास डिस्काउंट और सिर्फ 24 घंटों में क्लेम हासिल करने की सहूलत. कवर 3 के लिए डेडिकेटेड प्लान और 25,000 टॉप डॉक्टर से कंसल्टेशन भी. अभी इजी पैसा ऐप पर इंश्योरेंस मार्केटप्लेस एक्सप्लोर करें. इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक.
14: एक्सप्लोर करो, कुछ न्यू करो एट यूनाइटेड चार्टर स्कूल्स क्योंकि यहाँ हर स्टडी वेंचर बनता है एक एडवेंचर. एडमिशंस ओपन फॉर ऑल क्लासेस अप टू मैट्रिकुलेशन एंड ओ लेवल. यूनाइटेड चार्टर स्कूल्स, इनफिनिट पॉसिबिलिटीज.
15: अ प्रोजेक्ट ऑफ बीकन हाउस.
16: घर बैठे दिल भर के शॉपिंग करनी है वो भी किस्तों में? बस अपने फेवरेट ब्रांड्स की वेबसाइट पर पेमेंट बाय येलो सेलेक्ट करो और पे करो 3 सिंपल इंस्टॉलमेंट्स में. तो जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो विद येलो बाय जैस कैश.
17: नया अकाउंट भी कल परसों क्यों? अब खुलवाओ अभी. फाइनेंशियल फ्रीडम फॉर ऑल होगा तभी जब हर फैसला होगा अभी. कुछ बैंक्स आपका कल बनाते हैं, अभी बैंक बनाता है आपका आज अभी. डाउनलोड द ऐप अभी. अभी बैंक, फाइनेंशियल फ्रीडम फॉर ऑल.

0: along your song.
1: Only on City FM 89.
2: This show is brought to you by Jazz.
3: City FM 89.
2: This show is brought to you by AEO Pakistan.
4: City FM
1: 89.
5: Avail flat 25% and 40% off at the Diners Grand Azadi Celebration from 29th July. Hurry up and visit store now or shop online at diners.com.pk. Terms and conditions apply.
6: Pediasure se Eileen ko milta hai complete balanced nutrition with 37 vital nutrients including arginine and vitamin K2 for bone and muscle growth. Taake ye grow kare 50% faster.
7: टैक्स पे करना अब हुआ आसान. अभी जैज कैश ऐप डाउनलोड करें और अपना टैक्स पे करके लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं और जीतें इलेक्ट्रिक स्कूटर. आसान पेमेंट्स और एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स के लिए जैज कैश है ना.
8: हायर कर नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन. ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग. नो फ्रॉस्ट नो वरीज.
9: IoT सीम्स डिफिकल्ट. 4 सेक्शंस. लिमिटेड टाइम. हाई प्रेशर.
10: लिसनिंग रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग.
9: नॉट विद AEO पाकिस्तान.
10: एक्सपर्ट ट्रेनर्स. मॉक टेस्ट्स. स्पीकिंग प्रैक्टिस. Tips and strategies.
9: Learn strategies that actually work.
10: Practice plus structure equals better score. Improved fluency, better writing, higher band score.
9: Reserve your spot now at 0320-346-1147. 0320-346-1148. Visit now at www.aeo.com.pk.
11: Shared bundles. वो भी डिस्काउंट पर. सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो बस अभी जैज कैश ऐप से जैज V5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और पाओ 2000 रुपए तक का बेहतरीन डिस्काउंट अपने फेवरेट बंडल्स पर. बड़े डिस्काउंट्स के लिए जैज कैश है ना.
12: अभी बैंक बनाता है आपका आज. अभी डाउनलोड दी ऐप. अभी अभी बैंक. फाइनेंशियल फ्रीडम फॉर ऑल.
13: पैसे खर्च हो तो रिवॉर्ड तो बनता है. जैज कैश से सिर्फ 99 रुपए में रिवॉर्ड हब सब्सक्राइब करें. चैलेंजेस कंप्लीट करके अपना लेवल अपग्रेड करें और जीतें शानदार प्राइजेस. तो देर किस बात की. हर चैलेंज को एक्साइटिंग रिवॉर्ड में बदलने के लिए जैज कैश है ना.
14: सैलरी का वेट हो और सैलरी फिर लेट हो. पर एडवांस सैलरी से तुम सेट हो. अभी पैसे भिजवाओ मंगवाओ या सेविंग्स बनाओ. अभी नया अकाउंट भी कल परसों क्यों. अब खुलवाओ अभी. फाइनेंशियल फ्रीडम फॉर ऑल होगा तभी जब हर फैसला होगा अभी. कुछ बैंक्स आपका कल बनाते हैं. अभी बैंक बनाता है आपका आज. अभी डाउनलोड दी ऐप. अभी अभी बैंक. फाइनेंशियल फ्रीडम फॉर ऑल.
15: सिटी एफएम 89. We're playing your song.
1: You're listening to

0: antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: It's 6:30 p.m.
1: City FM 89.
3: This show is brought to you by Jazz.
1: City FM 89.
3: This show is brought to you by AEO Pakistan.
4: City FM 89.
5: Avail flat 25% and 40% off at the Diners Grand Azadi Celebration from 29th July. Hurry up and visit store now or shop online at diners.com.pk. Terms and conditions apply.
6: क्या आप जानते हैं कि उम्र बढ़ने के साथ हम 24% तक मसल मास खो सकते हैं? इसलिए इंश्योर जिसमें मौजूद 25 जरूरी विटामिंस और मिनरल्स रखे आपकी स्ट्रेंथ और मोबिलिटी को अप टू द मार्क. इंश्योर क्लिनिकली प्रूवन टू इंप्रूव मसल स्ट्रेंथ इन 90 डेज.
7: टैक्स पे करना अब हुआ आसान. अभी जैज कैश ऐप डाउनलोड करें और अपना टैक्स पे करके लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं और जीतें इलेक्ट्रिक स्कूटर. आसान पेमेंट्स और एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स के लिए जैज कैश है ना.
8: Hire No Frost IoT Refrigerator. इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल. नो फ्रॉस्ट, नो वरीज.
9: Former Christian College, a chartered university, the only member of the Global Liberal Arts Alliance in Pakistan, FCCU offers a unique opportunity to attain American-style education at an affordable fee structure. Scholarships and financial assistance available. Admissions open for bachelor's, master's, MPhil and PhD programs. Apply now.
8: Hire kar naya No Frost IoT refrigerator jiska multi airflow system de balanced cooling har compartment mein aur rakhe aapke refrigerator ko clean. Twin inverter technology jisse mile maximum cooling aur energy saving. No Frost, no worries.
10: Behtareen insurance har waqt aapke saath, jaise Easy Paisa Insurance Marketplace. 50 se zyada plans, behtareen coverage, khas discounts aur sirf 24 ghanton mein claim hasil karne ki sahulat. Khawateen ke liye dedicated plans aur 25,000 top doctors se consultation. अभी इजी पैसा ऐप पर इंश्योरेंस मार्केटप्लेस एक्सप्लोर करें. इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक.
11: एक्सप्लोर करो, कुछ न्यू करो एट यूनाइटेड चार्टर स्कूल्स, क्योंकि यहाँ हर स्टडी वेंचर बनता है एक एडवेंचर. एडमिशन्स ओपन फॉर ऑल क्लासेस अप टू मैट्रिकुलेशन एंड ओ लेवल. यूनाइटेड चार्टर स्कूल्स, इनफिनिट पॉसिबिलिटीज.
12: अ प्रोजेक्ट ऑफ बीकन हाउस.

0: to your song.
1: Only on City FM 89.
2: This show is brought to you by Jazz.
3: City FM 89.
2: This show is brought to you by AEO Pakistan.
4: City FM
3: 89.
5: Avail flat 25% and 40% off at the Diners Grand Azadi Celebration from 29th July. Hurry up and visit store now or shop online at diners.com.pk. Terms and conditions apply.
6: Higher No Frost IoT Refrigerator. Iski IoT technology food expiry notification ke saath saath aapko de mobile app se complete control. No frost, no worries.
7: Pediasure se Eileen ko milta hai complete balanced nutrition with 37 vital nutrients including arginine and vitamin K2 for bone and muscle growth. Taake ye grow kare 50% faster.
8: Shared bundles. वो भी डिस्काउंट पर सब्सक्राइब करना तो बनता है तो बस अभी जैस कैश ऐप से जैस V5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और पाओ 2000 रुपए तक का बेहतरीन डिस्काउंट अपने फेवरेट बंडल्स पर बड़े डिस्काउंट्स के लिए जैस कैश है ना
9: नाजरीन ताजा तरीन खबर से आपको आगाह करेंगे कि पूरे शहर में फैल चुकी है आपके टॉयलेट की बदबू
10: बंद करो ना ढक्कन
11: Sweepy Clean करे तेजी से सख्त दाग और जरासीम का खात्मा और रखे टॉयलेट को चमकता हुआ साफ
6: Higher No Frost IoT Refrigerator इसकी IoT technology food expiry notification के साथ साथ आपको दे mobile app से complete control No Frost No Worries
12: घर बैठे दिल भर के शॉपिंग करनी है वो भी किस्तों में बस अपने फेवरेट ब्रांड्स की वेबसाइट पर पेमेंट बाय येलो सेलेक्ट करो और पे करो 3 सिंपल इंस्टॉलमेंट्स में तो जो चाहे खरीदो पैसे आराम से दे दो विद येलो बाय जैस कैश

0: perfect antidote to your road rage.
1: Your road rage.
2: City FM 89.
3: Avail flat 25% and 40% off at the Diners Grand Azadi Celebration from 29th July. Hurry up and visit store now or shop online at diners.com.pk. Terms and conditions apply.
4: क्या आप जानते हैं कि उम्र बढ़ने के साथ हम 24% तक मसल मास खो सकते हैं? इसलिए इंश्योर जिसमें मौजूद 25 जरूरी विटामिंस और मिनरल्स रखे आपकी स्ट्रेंथ और मोबिलिटी को अप टू द मार्क. इंश्योर क्लिनिकली प्रूवन टू इंप्रूव मसल स्ट्रेंथ इन 90 डेज.
5: हायर नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर. इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल. नो फ्रॉस्ट, नो वरीज.
6: IoT सीम्स डिफिकल्ट. 4 सेक्शंस. Limited time, high pressure.
7: Listening, reading, writing, speaking.
6: Not with AEO Pakistan.
7: Expert trainers, mock tests, speaking practice, tips and strategies.
6: Learn strategies that actually work.
7: Practice plus structure equals better score. Improved fluency, better writing, higher band score.
6: Reserve your spot now at 0320-346-1147, 0320-346-1148. Visit now at www.aeo.com.pk.
5: Hire No Frost IoT Refrigerator. Iski IoT technology food expiry notification ke saath saath aapko de mobile app se complete control. No Frost, no worries.
8: Abhi Bank banata hai aapka aaj. Abhi. Download the app. Abhi. Abhi Bank. Financial freedom for all.

0: prolong your song.
1: Only on City FM 89.
2: Avail flat 25% and 40% off at the Diners Grand Azadi Celebration from 29th July. Hurry up and visit store now or shop online at diners.com.pk. Terms and conditions apply.
3: Pediasure se Eileen ko milta hai complete balanced nutrition with 37 vital nutrients including arginine and vitamin K2 for bone and muscle growth. Taake ye grow kare 50% faster.
4: Hire ka naya no frost IoT refrigerator jiska multi airflow system de balanced cooling har compartment mein aur rakhe aapke refrigerator ko clean twin inverter technology jisse mile maximum cooling aur energy saving no frost no worries
5: taiyar ho apni zindagi ka agla kadam lene ke liye AEO Pakistan laya hai Alson computer jahan testing ka har pal hota hai comfortable smooth aur stress free daily availability nationwide centers aur results bhi mile within just 3 days aaj hi book kare apna IELTS on computer AEO Pakistan Pakistan's most trusted IELTS test center book now at www.aeo.com.pk
6: Foreman Christian College a chartered university the only member of the Global Liberal Arts Alliance in Pakistan FCCU offers a unique opportunity to attain American-style education at an affordable fee structure. Scholarships and financial assistance available. Admissions open for bachelor's, master's, MPhil and PhD programs. Apply now.
7: Shared bundles, wo bhi discount par. Subscribe karna to banta hai. To bas abhi, Jazz Cash app se Jazz V5 Fantastic Bundle lagao. और पाओ 2000 रुपए तक का बेहतरीन डिस्काउंट अपने फेवरेट बंडल्स पर बड़े डिस्काउंट्स के लिए जैस कैश है ना
8: सैलरी का वेट हो और सैलरी फिर लेट हो पर एडवांस सैलरी से तुम सेट हो अभी पैसे भिजवाओ मंगवाओ या सेविंग्स बनाओ अभी नया अकाउंट भी कल परसों क्यों अब खुलवाओ अभी फाइनेंशियल फ्रीडम फॉर ऑल होगा तभी जब हर फैसला होगा अभी कुछ बैंक्स आपका कल बनाते हैं अभी बैंक बनाता है आपका आज अभी डाउनलोड द ऐप अभी अभी बैंक फाइनेंशियल फ्रीडम फॉर ऑल

0: एक्सप्लोर करो, कुछ न्यू करो एट यूनाइटेड चार्टर स्कूल्स, क्योंकि यहाँ हर स्टडी वेंचर बनता है एक एडवेंचर. एडमिशंस ओपन फॉर ऑल क्लासेस अप टू मैट्रिकुलेशन एंड ओ लेवल. यूनाइटेड चार्टर स्कूल्स, इनफिनिट पॉसिबिलिटीज.
1: A project of Beacon House.
2: पैसे खर्च हो तो रिवॉर्ड तो बनता है. जैज कैश से सिर्फ 99 रुपए में रिवॉर्ड हब सब्सक्राइब करें, चैलेंजेस कंप्लीट करके अपना लेवल अपग्रेड करें और जीतें शानदार प्राइजेस. तो देर किस बात की, हर चैलेंज को एक्साइटिंग रिवॉर्ड में बदलने के लिए जैज कैश है ना.
3: क्या आप जानते हैं कि उम्र बढ़ने के साथ हम 24% तक मसल मास खो सकते हैं, इसलिए इंश्योर जिसमें मौजूद 25 जरूरी विटामिंस और मिनरल्स रखे आपकी स्ट्रेंथ और मोबिलिटी को अप टू द मार्क. इंश्योर क्लिनिकली प्रूवन टू इंप्रूव मसल स्ट्रेंथ इन 90 डेज.
4: Attention, all party starters, weekenders, all-nighters, celebration seekers, beat kickers, thrill seekers, disco lovers, party hoppers, shakers, movers, non-stoppers. It's time to get together and dance, because this is Beat Camp.
5: Every Friday and Saturday, 10 p.m. to midnight, only on City FM 89.
6: City FM 89, we're playing your song.
7: You're listening to
8: Dark Room with Tapu Javeri.
9: I hope you all are doing well, staying safe, enjoying the fabulous music we are playing you. A big shout out to the Dark Room family, and this one is going out to my wonderful friend Sam. This is Stereo MCs with Connected.

0: antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: Shared bundles. वो भी डिस्काउंट पर. सब्सक्राइब करना तो बनता है. तो बस अभी जैस कैश ऐप से जैस V5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और पाओ 2000 रुपए तक का बेहतरीन डिस्काउंट अपने फेवरेट बंडल्स पर बड़े डिस्काउंट्स के लिए. जैस कैश है ना.
3: Avail flat 25% and 40% off at the Diners Grand Azadi Celebration from 29th July. Hurry up and visit store now or shop online at diners.com.pk. Terms and conditions apply.
4: Salary ka wait ho aur salary phir late ho.
5: Aha.
4: Par advance salary se tum set ho. Abhi. Paise bhijwao, mangwao ya savings banao. Abhi. Naya account bhi kal parso kyun? Ab khulwao abhi. Financial freedom for all hoga tabhi jab har faisla hoga abhi. Kuch banks aapka kal banate hain. अभी बैंक बनाता है आपका आज अभी. डाउनलोड द ऐप अभी. अभी बैंक. फाइनेंशियल फ्रीडम फॉर ऑल.
6: सिटी एफएम 89.
7: पैसे खर्च हो तो रिवॉर्ड तो बनता है. जैस कैश से सिर्फ 99 रुपए में रिवॉर्ड हब सब्सक्राइब करें. चैलेंजेस कंप्लीट करके अपना लेवल अपग्रेड करें और जीतें शानदार प्राइजेस. तो देर किस बात की. हर चैलेंज को एक्साइटिंग रिवॉर्ड में बदलने के लिए जैस कैश है ना.
1: City FM 89,
8: your drive along companion.
1: You're listening to
9: Dark Room with Tapu Javeri.
10: You're in the Dark Room, City FM 89. I hope you all are enjoying yourselves and the music. Time to dance again. This is Jennifer Lopez. Let's get loud.

0: perfect antidote to your road rage. Your road rage.
1: City FM 89.
2: Shared bundles. वो भी डिस्काउंट पर. सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो बस अभी जैस कैश ऐप से जैस V5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और पाओ 2,000 रुपए तक का बेहतरीन डिस्काउंट अपने फेवरेट बंडल्स पर. बड़े डिस्काउंट्स के लिए जैस कैश है ना.
3: Avail flat 25% and 40% off at the Diners Grand Azadi Celebration from 29th July. Hurry up and visit store now or shop online at diners.com.pk. Terms and conditions apply.
4: घर बैठे दिल भर के शॉपिंग करनी है, वो भी किस्तों में? बस अपने फेवरेट ब्रांड्स की वेबसाइट पर पेमेंट बाय येलो सेलेक्ट करो और पे करो 3 सिंपल इंस्टॉलमेंट्स में. तो जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो विद येलो बाय जैस कैश.
5: You got me going crazy.
6: पैसे खर्च हो तो रिवॉर्ड तो बनता है. जैस कैश से सिर्फ 99 रुपए में रिवॉर्ड हब सब्सक्राइब करें, चैलेंजेस कंप्लीट करके अपना लेवल अपग्रेड करें और जीतें शानदार प्राइजेस. तो देर किस बात की, हर चैलेंज को एक्साइटिंग रिवॉर्ड में बदलने के लिए जैस कैश है ना.
7: Attention, the standard commute has been decommissioned.
8: Introducing a system override for your ears.
9: New energy, new perspective. The same 24 hours, but a completely different vibe.
10: Join ABD as he takes over the streets.
9: Whether you're stuck in the third lane or finishing that final email,
8: your evenings just got an upgrade.
10: The rush hour with ABD.
9: Weekdays, 5 p.m. to 8 p.m.
8: Tune in or get left behind.
0: You're listening to
11: Dark Room with Tapu Javeri.
12: Soul to Soul, Back to Life, a track which is quite incredible and still relevant. Meanwhile, this is another one of those classics, the B-52s with Love Shack.

0: belong to your song.
1: Only on City FM 89.
2: It's 9 p.m.
3: This time check is brought to you by Jazz.
1: City FM 89.
0: Coming up next.
1: Future Sounds.
4: City FM 89. We're playing the song.
5: Trending today.
6: Pop star Charlie XCX has dropped her brand new album titled Music Fashion Film. The project features 11 tracks and is up on all platforms.
4: City FM 89.
7: Shared bundles. वो भी डिस्काउंट पर सब्सक्राइब करना तो बनता है तो बस अभी जैस कैश ऐप से जैस V5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और पाओ 2000 रुपए तक का बेहतरीन डिस्काउंट अपने फेवरेट बंडल्स पर बड़े डिस्काउंट्स के लिए जैस कैश है ना
8: घर बैठे दिल भर के शॉपिंग करनी है वो भी किस्तों में बस अपने फेवरेट ब्रांड्स की वेबसाइट पर पेमेंट बाय येलो सेलेक्ट करो और पे करो 3 सिंपल इंस्टॉलमेंट्स में तो जो चाहे खरीदो पैसे आराम से दे दो विद येलो बाय जैस कैश
4: 89
2: वेयर प्लेइंग योर सॉन्ग
4: फ्यूचर साउंड्स
9: न्यू ट्यून्स हॉट बीट्स वेयर योर नेक्स्ट फेवरेट ट्रैक फाइंड्स यू

0: antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: Shared bundles. वो भी डिस्काउंट पर. सब्सक्राइब करना तो बनता है. तो बस अभी जैस कैश ऐप से जैस V5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और पाओ 2000 रुपए तक का बेहतरीन डिस्काउंट अपने फेवरेट बंडल्स पर बड़े डिस्काउंट्स के लिए. जैस कैश है ना.
3: You're listening to City FM 89.
4: घर बैठे दिल भर के शॉपिंग करनी है वो भी किस्तों में. बस अपने फेवरेट ब्रांड्स की वेबसाइट पर पेमेंट बाय येलो सेलेक्ट करो और पे करो 3 सिंपल इंस्टॉलमेंट्स में. तो जो चाहे खरीदो पैसे आराम से दे दो विद येलो बाय जैस कैश.
5: City FM 89.
6: पैसे खर्च हो तो रिवॉर्ड तो बनता है. जैस कैश से सिर्फ 99 रुपए में रिवॉर्ड हब सब्सक्राइब करें. चैलेंजेस कंप्लीट करके अपना लेवल अपग्रेड करें और जीतें शानदार प्राइजेस. तो देर किस बात की, हर चैलेंज को एक्साइटिंग रिवॉर्ड में बदलने के लिए जैस कैश है ना.
7: The first time at the disco. When you love someone, it's natural, holiday with friends. Retro cinema.
8: Hey, where did we go? Days when the rains came.
7: Through music that speaks to you. Reconnect to your past with me, Amar Nasir, on Retro 89.
9: Every Sunday evening from 7 p.m. to 9 p.m. only on City FM 89.
10: City FM 89 is now live on WhatsApp.
11: It's so easy.
12: 0314-289-8989.
11: Save, text, voice note or call to get your song played.
12: And talk to your favorite artists. Only on City FM 89.
13: City FM 89. We're playing your song.
1: You're listening to
14: Future Sounds.
15: Future Sounds.
16: New tunes, hot beats. Where your next favorite track finds you.

0: your song.
1: Only on City FM
2: 89. Shared bundles, वो भी डिस्काउंट पर. सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो बस अभी जैस कैश ऐप से जैस V5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और पाओ 2000 रुपए तक का बेहतरीन डिस्काउंट अपने फेवरेट बंडल्स पर. बड़े डिस्काउंट्स के लिए जैस कैश है ना.
3: घर बैठे दिल भर के शॉपिंग करनी है, वो भी किस्तों में? बस अपने फेवरेट ब्रांड्स की वेबसाइट पर पेमेंट बाय येलो सेलेक्ट करो और पे करो 3 सिंपल इंस्टॉलमेंट्स में, तो जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो विद येलो बाय जैस कैश.
4: City FM 89.
5: You're listening to
0: Non-Stop Hits.

0: perfect antidote to your road rage.
1: Your road rage.
2: City FM 89.
3: It's 10:30 p.m. City FM 89. We're playing the song.
4: Shared bundles. वो भी डिस्काउंट पर सब्सक्राइब करना तो बनता है तो बस अभी जैस कैश ऐप से जैस V5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और पाओ 2,000 रुपए तक का बेहतरीन डिस्काउंट अपने फेवरेट बंडल्स पर बड़े डिस्काउंट्स के लिए जैस कैश है ना
0: घर बैठे दिल भर के शॉपिंग करनी है वो भी किस्तों में बस अपने फेवरेट ब्रांड्स की वेबसाइट पर पेमेंट बाय येलो सेलेक्ट करो और पे करो 3 सिंपल इंस्टॉलमेंट्स में तो जो चाहे खरीदो पैसे आराम से दे दो विद येलो बाय जैस कैश
5: बेहतरीन इंश्योरेंस हर वक्त आपके साथ जैसे इजी पैसा इंश्योरेंस मार्केटप्लेस 50 से ज्यादा प्लान्स बेहतरीन कवरेज खास डिस्काउंट्स और सिर्फ 24 घंटों में क्लेम हासिल करने की सहूलत कवर 3 के लिए डेडिकेटेड प्लान्स और 25,000 टॉप डॉक्टर से कंसल्टेशन भी अभी इजी पैसा ऐप पर इंश्योरेंस मार्केटप्लेस एक्सप्लोर करें इजी पैसा डिजिटल बैंक इजी वाला बैंक
2: सिटी एफएम 89
6: पैसे खर्च हो तो रिवॉर्ड तो बनता है जैस कैश से सिर्फ 99 रुपए में रिवॉर्ड हब सब्सक्राइब करें चैलेंजेस कंप्लीट करके अपना लेवल अपग्रेड करें और जीतें शानदार प्राइजेस तो देर किस बात की हर चैलेंज को एक्साइटिंग रिवॉर्ड में बदलने के लिए जैस कैश है ना
2: सिटी एफएम 89 वी आर प्लेइंग योर सॉन्ग
0: You're listening to
2: Non-Stop Hits.
7: No talk.
8: Just you
7: and the music.
8: Back to back
7: starts now.